0: स्पर्धात्मक हिसाब से फिर खेती कर रही ना एक थोड़ी मदद फिर कर रही
1: गाँव मैंने टोटल बीजे जा तो 4 बीघा लगा थे 4 बीघा में मेरे सब कुंडल गया थे जो प्रमाण पेश करो जग्गा को मालपुर किले को सिक्का पत्ता कागज लाल पत्ता हो गांव बालिका ने कराइट एरिया एक टक में कति कुंडल उत्पादन करने लगभग 1 बीघा को उसमें मैं समथिंग 9 हजार में आयो यो कार्यक्रम निर्यात करने किसान को राम्रो है गांव मत छिटे उसको कराइट एरिया मुंडा मत लगेन भो पाने जस्ते उसको कराइट एरिया 1 कुंडल में 70-75 किलो पड़े फिर एवरेज में किसान ने अब सौटे को बड़ी उत्पादन कर सको उसको क्राइट एरिया मत आये उसमें पाने हो इसमें मेरा लगभग संशोधन अर्क प्रयास किसान निर्यात करने क्यों उत्पादन को आधार में दिने किसान ने मल जल करने हो किसान क्षमता मान मे उसमें सहयोग अर्क उसको व्यक्तिगत उसमें फायदा राम्रो अब करने किसान अलग जल मल को व्यवस्था सिंचाई को व्यवस्था हो
2: यसै जनावाज सँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। रसुवा बाढ़ी प्रभावित वडा नम्बर 5 का 7 जनाका आफन्तलाई टोल विकास संस्थाले उठाएको 1,38,000 रूपियाँ सहयोग प्रदान। नगर अनुदान शीर्षकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। रामारसन विकास केन्द्रको प्रथम साधारण सभा उद्घाटन। सरकार संस्कार र संस्कृति जोगाउन निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको आग्रह। इन्टरनेट सेवामा लापरवाही, क्लासिक टेकले 2.5 लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला। र जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा डेंगीको लार्वा खोज र नष्ट अभियान सञ्चालन। अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र छतिलाल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर साउद बिदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रोग्राम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।

0: इलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
1: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: एल्विस एल्विरा टेरस में डिजाइन का साड़ी सूट कुर्ती पलाजा तथान का कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन्छन् एक चोटी सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला
5: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाड़ी टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ संपर्क नंबर 9811

0: बुका पिएरै ठक बु पेन्सिलेरै ठक बु झलै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फि ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो इ बुढा लिखले का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक कबु पेन्सिल हेरा कै ठक कबु झोलै फटा कै ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त का हो टीकापुर म रलक रगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहिएक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुही
1: ल्याल्या मैं अब दिन जाइबू रगैया झोला उद्योग में रगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो अपन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाहुका अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फिस सुन्टी रहलबाटे खोज खबर शुरू गरी खबरके मुख्य मुख्य शीर्षक छ रसुवा बाढ़ी प्रभावित वडा नम्बर 5 के 7 जना आफन्त टोल विकास संस्था उठेलक 1,38,000 रूपियाँ सहयोग प्रदान नगर अनुदान शीर्षक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञापन पत्र बुझागिल रामा रोशन विकास केन्द्रकै प्रथम साधारण सभा उद्घाटन संस्कार र संस्कृति जोगाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै आग्रह इन्टरनेट सेवामा लापरवाही क्लासिक ट्याक्सी 2.5 लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति तिरपना फैसला व जानकी गाउँपालिका छमा डेंगी की लार्भा खोज तथा नष्ट अभियान सञ्चालन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय नेता कमल बहादुर शाह संस्कृति ओ संस्कार जोगाइना सपकुनके दायित्व हुइलक बटुइलबाट रामा रोशन विकास केन्द्रकै प्रथम साधारण सभा तथा खासे मेलाकै टीकापुरमा काली उद्घाटन गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाह असिन बटुइलक हुइट वहाँ सुदूरपश्चिमकै पहाड़ी क्षेत्रमा रामा रोशन बढ़ी मालिका ओ खप्टर मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र हुइलक वर्ष याकर विकास केलाक प्रदेश सरकार लागि पर्लको सरकारवाला नागरिक हुँक्र फेस सात देहपना बटुइलबाट पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री छपट बहादुर साउट रामा रोशनकै विकास केलाक अपनहुक लगलग बटैटी कुछ वर्ष आग ऐलक बाढ़ी से कुछ संरचना तहस नहस पर्लक वर्ष विकासमा पाछ पर्लक बटुइलबाट वहाँ अब फिर रामा रोशन क्षेत्रकै विकास केलाक प्रदेश सभा से पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन केलाक पहल कतिरलक बटुइलबाट पूर्व प्रदेश सभा सदस्य नन्द बहादुर साउट कौनो फे ठाउँकै विकास केलाक सड़क सञ्जाल आवश्यक रहलक बटोइटे रामा रोशनकै विकास केलाक तराई पहाड़ जोर्ना सड़ककै सञ्जालकै विकास करपना बटुइलबाट साधारण सभा तथा मेला उद्घाटन कार्यक्रम सुदूरपश्चिम खेलकुद विकास समितिकै पूर्व अध्यक्ष दीपक बहादुर साउ टीकापुर नगरपालिकाकै कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगार्जे रामा रोशन गाउँपालिकाकै अध्यक्ष मान बहादुर साउसे शुभकामना मन्तव्य डेगिल रह रामा रोशन विकास केन्द्रकै अध्यक्ष दिनेश कुमार शाहकै अध्यक्षतामा हुइलक उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष शुभनाथ देव कोटा करल र लकलसे संचालन सचिव नवल सिंह रोकाया करल र साधारण सभाकै बन्द सत्र आज हुइयाबा रसुवाकै भोटेकोसी लद्देमा ऐलक बाढ़ी पाछ सम्पर्क विहीन हुइलक टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 के नागरिक परिवार हन नगद सहायता प्रदान करगिलबा वडा नम्बर 5 के 7 जना भोटेकोसी बाढ़ीमा बेपत्ता हुइलबाट हुकन टोल विकास संस्था राष्ट्रिय मावि मणिकापुर संकलन कलक नगद रकम ओडा कार्यालय मार्फत हस्तान्तरण करगिलक हो ओडा कार्यालयमा एक

0: कार्यक्रम कई क वड़ा नंबर 5 के कार्यालय कार्य संजाल के पहलमन वड़ा के 25 ठो टोल विकास संस्था से संकलित 1,38,005 रूपया हुकन बार गिल खो जिही मन नगद 1,27,975 रूपया टोल विकास संस्था से संकलन हुई लखो राष्ट्रीय मावी मणिकापुर 10,025 रूपया राहत उपलब्ध कराई लखो टोल विकास संस्था ई बाहेक 21,000 रूपया प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोष में समेत जमा कर सकलक बटुलबा ओडा में 7 परिवार बाढ़ी से प्रभावित हुई प्रति परिवार 19,715 रूपया वितरण करगिल बा वडाध्यक्ष लाल बलबीर थारू बाढ़ी प्रभावित के खोजी के लागि समन्वय कलक ओ आबफे प्रयास जारी रहलक बटुटी गांव के नागरिक के पीड़ा से आपन हुकनफे पीड़ा हुईलक बटुले बाट राष्ट्रीय मावी मणिकापुर के शिक्षक जगदीश चौधरी आपन विद्यालय में अध्ययनरत बालिका के दाई बाबा बाढ़ी में पड़लक ओरसे विद्यालय फिर पीड़ा महसूस करती रहलक ओ बाल बालिका से आपन खाजा खर्चो से रकम सहयोग कलक बटुलबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक करण सिंह बोहरा विपद के बेला ओडा के सक्कू नागरिक मिलकन सहयोग करबे सहज हुईना बटुलबाट 5 नंबर ओडा कार्य संजाल के अध्यक्ष सिंहराज बुधा मगर पीड़ित परिवार के लाख कुछ कर परट कैक टोल विकास संस्था मार्फत सहयोग उठाईबेर मजा रकम संकलन हुईलक बटुलबाट संजाल के सचिव विजय कार्की टोल विकास संस्था मार्फत काम कर सहज हुईलक बटुलबाट कार्यक्रम संचालन नीरज चौधरी कर रहल ह। कैलाली के जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 6 में डेंगी के लार्भा खोजी तथा नष्ट अभियान संचालन करगिलवा ई समय में विभिन्न किसिम के संक्रमण फैल सेकना हुईलक ओर से अभियान संचालन करगिलक हो वड़ा नंबर 6 स्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र से अभियान संचालन अंतर्गत अभियान पूर्व महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गांव के बरघर विद्यालय के प्रधानाध्यापक समाजसेवी लगायत डेंगी रोग संबंधी सचेतना कार्यक्रम पाछ डेंगी के लार्भा खोजी व नष्ट करना अभियान संचालन करगिलक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र के प्रमुख विनोद कठायत जानकारी देलबाट वहां ई सम्बन्धी विद्यालय में सचेतना करना काम करिरहेको ओडा के अन्य ठाउँ वा टोल मफे सचेतना के लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका व गांव मन बरघर मार्फत सचेतना करना काम करतीरलक बटुलबाट पारिश्रमिक वृद्धि के माकटी टीकापुर नगर अनुदान शिक्षक समिति टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोलाह ज्ञापन पत्र बुझैलबाट हाल नगर अनुदान में कार्यरत शिक्षक र ओह विद्यालय में कार्यरत कार्यालय सहयोगी सेफे कम पारिश्रमिक में काम करती रलक से वृद्धि करना माग करलक फिट समय व परिस्थिति अनुसार पारिश्रमिक में वृद्धि कर देहपना माग ज्ञापन पत्र में उल्लेख रहलबा चालू आर्थिक वर्ष थे आपन माग पूरा होकर संबोधन हुई बातमन अपना विश्वस्त रहलक नगर अनुदान शिक्षक समिति अध्यक्ष सूर्यादेवी भट्टराई बटुलबाट खोज खबर में एक घरिक विश्राम विश्राम पाछनी बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आंखा का रोगी अत्यंत जरूरी सूचना नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आंखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आंखा शिविर संचालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आंखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारी का लागि गेटा आँखा अस्पताल संपर्क नंबर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगोरा थारू संपर्क नंबर 98-484-57-875।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
3: तपाईं एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छ दिदी छ भाई छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि को थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ
2: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
1: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। इन्टरनेट सेवामा लापरवाही गर्न कलासिक टेक्सी 2.5 लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति तिरफन हुल बा। गैर आवासीय नेपाली शिवप्रसाद पौड्यालसे कलासिक टेक प्रणाली विरूद्धकै मुद्दामा उपभोक्ता अदालत 2.5 लाख क्षतिपूर्ति पैना फैसला सुनैलबा। भक्तपुरके सूर्य विनायक नगरपालिका 3 नयाँ बस्ती ठिमीके 60 वर्षीय पौड्याल 2083 जेठ 19 गते क्लासिक टेक्से देलक इन्टरनेट सेवा घरिघरि अवरोध हुइलको अनुचित व्यापार कैकन आपन 10 लाख बराबर कि क्षति हुइलक बटोइटी उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा देलरल। बिहिबार अदालत कम्पनी उपभोक्ता क्षति पुगैलक ठहर कटी क्लासिक टेक्से 2.5 लाख क्षतिपूर्ति देना फैसला सुनैलबा। क्लासिक टेक्से 20 दिनसम्म इन्टरनेट सेवा अवरोध धर्कन ग्राहकके गुनासो व्यवस्था कर्क तथा समस्या समाधानमा अनावश्यक ढिलाइ कैक सूचना प्राप्त गर्न परिवारसे सम्पर्क धर्न लेखन तथा अनुसन्धान गर्न वा अन्य दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्लक उहाँसे उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 के दफा 50 के अवस्था के विद्ध मानता हुइलकोर्से माग बमोजिम क्षतिपूर्ति पाइपना उपभोक्ता पौड्याल माग दाबी लेलबाट इन्टरनेट अवरोध हुइबेर व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काम प्रभावित हुइलक समय श्रम ओ आर्थिक तथा मानसिक नोक्सानी व्यवहार पलक अवस्था हुइलकोर्से विपक्षी कम्पनी क्षतिपूर्ति देहेपना माग धरबेर विपक्षी उ प्रस्ताव अस्वीकार करल 20 दिनसम्म विपक्षी क्लासिक टेक समस्या समाधान निकैक सेवा प्रदान निकरल पाछ बाध्य हो का मुद्दा दार पर्लक बटुवा गिल बा। हाल देशभर मनसूनी वायुके सँग पश्चिमी वायुके फे आंशिक प्रभाव रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा। मनसूनके न्यून चापीय रेखा सेफे सरदर स्थानके दक्षिण उहर रहलबा, जकर प्रभावसे देशभर साधारणतया बादल लागलबा। बागमती और गण्डकी प्रदेश के दान्चे और कोशी प्रदेश के एक दुई ठाउँमा हल्का थिसे मध्यम वर्षा हुइटी रहलबा। आज दिन का देशभर साधारणतया बद्री लगुएबा। कोशी बागमती और गण्डकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाउँ ओ लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम के हिमाली भूभाग के दान्चे ठाउँ मन मध्यम सम्म वर्षा के सम्भावना रहलबा। कोशी बागमती और गण्डकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के ढ्यूर ठाउँ तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाउँ मन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के सम्भावना बा। देश के तराई भूभाग के दान्चे ठाउँ मन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के सम्भावना बा। कोशी बागमती और गण्डकी प्रदेश के हिमालय और पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाउँ मन भारी वर्षा के सम्भावना रहलबा। लागू औषध मुद्दामा फरहाद डोटीके एकजना पक्राउ परलबाट जिल्ला अदालत डोटीके 2082 माघ 22 गतेके फैसला से एक महिना एक दिन कैद सजाय टोकगिलक जोराइल गाउँपालिका 4 खैडाड बैसना 22 वर्षीय खेम बहादुर पुन मगर पक्राउ पलक हुइट। पुन मगर जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी से खटगिलक प्रहरी के टोली बिहीबार डिपाइल सिलगढ़ी नगरपालिका 6 सिलगढ़ी बजार से पक्राउ कलक जनागिल्बा। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम। बिहीबार डिपाइल सिलगढ़ी नगरपालिका 6 सिलगढ़ी बजार से पक्राउ कलक जनागिल्बा। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊं वहां अपन अनुहार बिगड़ के घर से

0: बाहर नहीं निकल छु
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
0: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: खोज खबर में फिर स्वागत बा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ भोटीकोशी बारीमा 677 जना मजदूर सम्पर्क विहीन हुईलक जनैलबा महासंघ यातायात व्यवस्था विभाग के महानिदेशक राजीव पोखरेल के समयजकत्वमा बिहीबार हुईलक बैठकमा ऊ जानकारी देती 515 ठो ट्रक तथा कन्टेनर हेरैलक बटुलक हो महासंघ यातायात व्यवस्था विभाग के पूर्वाधार विकास मंत्रालय यातायात व्यवस्था विभाग के महानिदेशक पोखरेल के समय जग तोम बाढ़ी से हुईलक मानवीय तथा भौतिक क्षति के मूल्यांकन क्षतिपूर्ति के आधार के विषय में राय सहित के प्रतिवेदन तैयार कर समिति गठन कर लबा समिति है 15 दिन भीतर राय सुझाव सहित के प्रतिवेदन पेश कर जिम्मेवारी देगिलबा महासंघ बाढ़ी से हुईलक मानवीय तथा भौतिक क्षति के प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करते संपर्क विहीन मजदूर व हेरैलक ट्रक व कन्टेनर के संख्या आमीन बरसेकना जनैलबा समिति में पूर्वाधार विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि पूर्वाधार विकास मंत्री के सचिवालय के प्रतिनिधि यातायात व्यवसाय के प्रतिनिधि यातायात मजदूर संघ संगठन के प्रतिनिधि सहित नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानिया व महासंघ के महासचिव बद्री प्रसाद चौला गई सदस्य रहलबाट कर्णाली प्रदेश सरकार कृषि उत्पादन के प्रवर्धन और कृषक उत्पादन में प्रोत्साहन करना उद्देश्य लेकर विभिन्न कृषि उपज में लगैती अल कर चालू आर्थिक वर्ष थेसे खारिज करलबा कृषि उत्पादन में लगती अल कर हटाइल पाछ कृषक तथा व्यवसाय उत्पादन और बजारीकरण में सहजुना प्रदेश सरकार के अपेक्षा रहलबा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के गैलक आर्थिक वर्ष के प्रगति विवरण अनुसार कर्णाली से एक वर्ष मन तीन अर्ब चौसठी करोड़ 6 लाख रूपया बराबर के कृषिजन्य उपज अन्य जिला में निर्यात हुई बा खाद्यान्न दलहन फलफूल अदुआ बेसार आलू मह ओ च्याउ लगायत के 77,495 मेट्रिक टन कृषि उपज प्रदेश बाहर निर्यात हुईलक मंत्रालय से जनागिल बा कृषिजन्य उत्पादन बाहर पठेना क्रम बढ़ल से फे पशुजन्य उत्पादन मन कर्णाली आमी यातायात में निर्भर रहलक तथ्यांक से देखागिल बा पशुजन्य उपज निर्यात से प्रदेश मन 28,73,00,000 रूपया भित्रागिल बा ओह अवधि में दूध मासु माछा अंडा और दाना लगायत के पशुजन्य वस्तु आयात मन 95,11,00,000 रूपया बाहर गेल बा मुगलिंग नारायणगढ़ सड़क खंड के 15 किलो मन लेडो सहित के पहिरो खसबेर सड़क एकतर्फी अवरोध बनल बा सड़क डिवीजन भरतपुर के अनुसार सड़क ऊपर से लेडो खसना के कारण शुक्रवार बिहान 7:30 बजे थे सवारी एकतर्फी अवरोध बनलक हो लेडो पंछा का सड़क दुईतर्फी संचालन में लान 1.5 घंटा लगना अनुमान डिवीजन भरतपुर बटवेलबा यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से रसुआ बाढ़ी प्रभावित ओडा नंबर 5 के 7 जना के आफन्त टोल विकास संस्था उठेलक 1,38,000 सहयोग प्रदान नगर अनुदान शिक्षक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ज्ञापन पत्र बुझाए रामा रोशन विकास केन्द्र के प्रथम साधारण सभा उद्घाटन संस्कार और संस्कृति जोगाई निवर्तमान मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के आग्रह इंटरनेट से अमल लापरवाही क्लासिक टेक्स से 2.5 लाख रूपया क्षतिपूर्ति दीर पर्ना फैसला जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 6 में डेंगी के लार्वा खोज तथा नष्ट अभियान संचालन लीता अबकला थारू भाषा खोज खबर ओराइल और समाचार 12 बजे नेपाली भाषा में खबर संक्षेप सुन सकबी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाका न लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261।

राम राम। समुन्नत समाज के लगे समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सबको रेडियो प्रेमी मैगर संग रुकन में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाह मई चांद मोरी बोल अपने रुकन के संगे पुगे संग रे दीपेन्द्र जी अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम डट ओआरजी टीकापुर एफएम एप मार्फत हम पात्रो नेपाली पात्र मार्फत से संसार के कोई भी कोनोआ से सब जाने संग संगे आती कार्यक्रम गोचाली हुई हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे सम्म हम सबको जाने संग संगे रही आज से संग संगे हुई या पुगलाती एकदम सितर सितर सितर मौसम बहु संग्रह क्रव्य के समय में का करती आती जे बिल्कुल निंगती घूमती भी फुर्सत के समय में भी अपन अपन काम धंधा में लागल बाटी की जहां जौन अवस्था में भी रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज बनाई भी सुनती भी कुशल मंगल आराम में हुई भी करना हम हन लागत हो एकचोटी समय निगार के हुई से फिर साथ दे चाहिए ना भूलेगी अपन मन परल संघरिया के खोजी में बाटी यानी कि अपन भावना रुचि संगे मेल खाना संघरकन के संगे संघरिया बनना ओ बनैना सपने होकर मन परत यानी कि अपन रानी बानी मेल खाना संघरकन के संगे चिन जान हुईना जो अपने होकर मन परत लौड़ा लौड़ी चाहे कोई संघन देखे अपने होकर आवश्यक थी ये मैगर अर्जी करना चाहम अपने होकर के संगे कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने होकर 091-5-3-55 के डगर मार्फत अपन सहभागी जनाई थे रवि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक गीत से

भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गले से सुन्ते बाटी समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्ते बाटी अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकु जाने संगसंगी कार्यक्रम गोचाली हवाई हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे समय हम सकु जाने संगसंगे रही आज से सकु जाने संगसंगे बाटी लाइन खुला भावी गोचाली कार्यक्रम मार्फत गोचाली बनाइन मन परल संघरे गोचाली कार्यक्रम मार्फत संघरे बने सेक्न सकुय संघरे चाहिँ अपन भावना रुचि बताई शिक्षिकन अपने मई मैगर जानकारी करना चाहम भावना रुचि सुनाई संग्रह बनी हो बनाई लौरा लौनी चाहे कोई संग्रह के अपने अर्जी करना चाहम कोई संग्रह लाइन में आपको लाने का संकेत मिलल कहाँ से कौन संग्रह हजुर राम राम हजुर राम राम हेलो हजुर राम राम हेलो हजुर राम राम खैर वहाँ चाहे लाइन में आए रहे वहाँ के बोल हमने सुन नहीं सुन पैली खैर अपने के मजा नेटवर्क को हिल ठाउं से जो साथ देना प्रयास कर दी को पूरा बात बटवा के जादे भी करना अपने हुकम में मई कर अर्जी करना चाहम ये जानकारी करना चाहम अपने हुकम के संगे लाइन खुला बाई 0-91-561-255 के डगर मार्फत सहभागी जनाई शेट्ठी एकनामय अपने मैगर जानकारी करना चाहम लाइन खुला भावी 0-91-561-255 के डगर मार्फत अपन सहभागी जनाई शेट्ठी अपन भावना रुचि मेल खाइना संगठन के संगे भावनात्मक जो संगत करे शेट्ठी भावनात्मक नाता जो गांव से शेट्ठी का अपने मैगर जानकारी करना चाहम कोई संग्रह फिर चल लाइन में आपको गलाते करना संकेत मिलन वा कहाँ से कौन संग्रह हुई हजुर राम राम हजुर राम राम खैर वहाँ के बोल फिर से नहीं सुन मिलन लाइन खुला भाई 0-91-561-255 के नगर खुला भाई अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम एप से मार्फत हाम्रो पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सक्कु जाने संगसंगे आती एकदम शीतल शीतल मौसम भाई संग्रह करने के समय में निगती घूमते आती फुर्सत के समय में आती अपन अपन काम धंधा में लागल बाटी की मजे हुई कुशल मंगल आराम हुई एक चोटी समय निकाल के होने से फिर साथ दे चाहे बिल्कुल ही ना भूले भी अर्जी करना चाहूँ अपने उनके संगे संग्रह दीपेंद्र जी साथ साथ देना अपने हुकुन के फेपाल हो मोरी बोल अपने हुकुन के संगे दीपेंद्र जी पुगै टियात मई चांद के बाद बिल्कुल गोचानी कार्यक्रम हो हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे सम्म अपने हुकुन के संग संगे रही आज से सकु जाने संग संगे आदि के नाम मई अपने को अर्जी करना चाहूँ कोई संग लाइन में रहती रहती फिर से वहाँ डिस्कनेक्ट हुई पुगला खैर रहे पर हम एक गीत जोड़ी गीत के बाद से हम फिर से बाटी लाइन खुला बा

हजुर, कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने उपकरण अनलाइनमा www.tikaparfm.org tikaparfm एप्स मार्फत हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत संसारकै कोही भी कोनो से सकुजाने सँगसँगै आती 101 मेगा हर्जको तरंग मार्फत अपने उपकरणको रेडियो सेटसम्म मोबाइल सेटसम्म फेमलेबाटी दिपेन्द्रजी साथ देतियातै मै चान्दके पार जही जानकारी गर्न चाहम 091-5-61-255 के डगर कुछ गड़बड़ भाव ई जानकारी करना चाहम अपने फ्रेंड के संगे तब मारे मई मोबाइल नंबर देना चाहम 98-14-62-73-50 98-14-62-73-50 ई लाइन मार्फत आई सक ठिकाना अपने फ्रेंड में मई का जानकारी करना चाहम लैंडलाइन चाहे कुछ हमार गड़बड़ हुए कारण से अपने फ्रेंड के बोल सुन नहीं मिलत हो तब मारे लावा डगर 98-14-62-73-85 लाइन मार्फत आई सक ठिकाना अपने फोन में मई का जानकारी करना चाहम लैंडलाइन चाहे कुछ हमार गड़बड़ हुए कारण से अपने फोन के बोल सुन नहीं मिलत हो तब मारे लावा डगर 98-14-62-73-85 लाइन मार्फत अपन सहभागी जनाई सक ठिकाना अपने फोन में मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुल्ला बाबई जानकारी करना चाहम अपने उपकरण के संगे सितर सितर मौसम के संगे अपने उपकरण के दिनचर्या मजे से बीतती हुई करना लागत नेंगती घूमती हुई भी फुर्सत के समय में भी अपन अपन काम धंधे में लागल बाती की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम में हुई भी एक सीधी समय निकाल के होने से फिर साथ देख चाहिए ना भूलेगी ये कार्यक्रम अपने उपकरण के लगने कार्यक्रम हो गोचाली रेडियो मार्फत चीन जानकारी लगके ठो कार्यक्रम गोचाली चाहिँ अपन अपन भावना रुचि मेल खाना सँगकिनके सँगै भावनात्मक सम्बन्ध जोरे सेक्न कार्यक्रम गोचाली तपमारे अपनेहरूले अपन भावना रुचि मन पर अपन अपन भावना रुचि मन परल सँगकिनके सँगै भावनात्मक सम्बन्ध जोरे चाहिँ यो सँगकिनके चाहिँ ए मैमैका जानकारी गर्न चाहम 98-14-62-73-50 091-5-61-255 के डगर कुछ गड़बड़ हुईले कारण से ई लाइन चाहिँ गड़बड़ रहो सँगकिनके अपने अर्जी गर्न चाहम ई लाइन मार्फत ल्यान्डलाइन मार्फत अपने के बोल सुन नै मिल्थ है तब मारे अपने के बोल सुने के मारे अपने उपकरण सिमोटेक लग अपने उपकरण के सहभागिता हुआ एक लग चाहिँ लावा डगर बाबै ईमेल का जानकारी करना चाहम 98-14-62-73-50 98-14-62-73-50 ई नंबर मार्फत अपन सहभागी जनाइ सकियो सहभागी जनाइ सकिकन अपने मई कर जानकारी करना चाहम अपने मजा नेटवर्क को हेल्थ से साथ देना प्रयास कर भी पूरा बात बटवा के जा देवी मिसकल चाहे बिल्कुल ना मार देवी संघरे बना के चाहे संघरे के संबंध बिल्कुल ना टूट देवी मई का जानकारी करना चाहम लौरा लौनी चाहे कोई संघरे के फिर अपने आई सिक थी आई मई का जानकारी करना चाहम अठे पर हमने फिर से गीत जोरी गीत के पास हमने फिर से अभी बाटी लाइन खुल्ला बाई 98-14-62-73-50

कार्यक्रममा फेर स्वागत गर्न चाहब आफ्नो www.tikaaprfm.org tikaaprfm एप मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसारकै कोही भी कोनो से सको जाने सँगसँगै आती 101 मेगाहर्जको तरंग मार्फत अपने के रेडियो सेटसम्म मोबाइल सेटसम्म हाम्रो बाती दुईजना दिपेन्द्रजी साथीले त्यतै मै चाँद के पार कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे करिब करिब 11 बजेसम्म हाम्रो सको जाने सँगसँगै रठी वाचे सँगसँगै बाटी सक्कु जाने जौन ठाउँमा रेडियो 90 ठाउँ एकदमै लग्यो सज्ञाती या वह ठाउँ से अपन सहभागी फे जनाइ सिक ठिकना अपने कनमै मै गर अर्जी गर्न चाहम 9814-62-73-85 नम्बर आइडगर अपने कुरे आइ सिक ठी ई मै गर जानकारी गर्न चाहम 0915-61-255 के दगर कुछ ई लाइन कुछ गडबड हुइले कारण से जो अपने उपकरण 9914-62-73-85 ई डगर दे जिल्ला खोसाङ रे तब मारे अपने उपरे आई भी कलेज से मिस कल चाहे बिल्कुल नामार देवी और पूरा बार टुटवा खेजा देवी संघरे के संबंध ना टुटा देवी संघरे के संबंध जोर भी कलेज बिल्कुल ना टुटा देवी मई का जानकारी करना चाहम लवरा लवनी चाहे कोई संघरे के फिर आई सिक थी ई मई का जानकारी करना चाहम ये कार्यक्रम अपने उपकरण के लग्न है कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने उपकरण कैसी लागत टिटमिट सलाह सुझाव फिर दे सक थी ओ ये कार्यक्रम मार्फत अपन भावना रुचि मेल खाना संगठन के संग चिन्जान हुई जो सकती ई मेगा जानकारी करना चाहम अपन अपन भावना रुचि मन परल संग्रह होकर चाहे अपने होकर आई सकती अपन अपन रानी बानी मिलना संग्रह उपकरण के संगे जो अपने होकर आई सकती ई मेगा जानकारी करना चाहम लाइन खुला बावे 9914-62-73-85 इधर अगर खुला कर लेती अठे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद हमने फिर से बाटी लाइन खुला बा

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आदि था, कहा का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गये झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कट्टा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
4: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624 70483।
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाऊँ।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
7: जापानी इंसेफलाइटिस रोग संबंधी स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना।
8: जापानीज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्क में संक्रमण होने लामखुट्टी को टोकाई सर्ने भाइरल रोग हो। यो रोग जुनसुक उमेर का मानसहरूलाई लाग्न सक्छ तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनि का बाल बालिका में देखिन्छ।
9: यो भाइरस संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुंगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन। यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ।
8: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
9: बेसरी टाउको दुख्ने
8: उच्च ज्वरो आउने बेहोश हुने
9: घाँटी अररो कडा हुने
8: कम्पन हुने
9: पक्षघात हुने
8: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
9: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
8: लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
9: हाँस कुखुरा सुंगुर बुंगुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौं।
8: घर बाहिर निस्कदा खेतबारीमा काम गर्दा पुरा बाउला भएको कपडा लगाऊ।
9: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौं।
8: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं।
9: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं।
8: याद गर्नुहोस् यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
10: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली।
11: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस टपाटीन गति लो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर भर थी रहा
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कतरा सुगर झोला अन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: क्रोस राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्झे 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत बाज खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपना होकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमरो पात्रो नेपाली पात्रो में फिसिंटी रहल बाटिए। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में सर्प उद्धार अभियान साउनो भदौ में 161 सर्प के उद्धार टीकापुर के सहकारी से रसुआबारी प्रभावित होना राहत प्रदान फोहोर सफा करल जस्त बजेट के बेथिति सफा करना सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मनैना ओ पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाई सरकार के ध्यान आकर्षण आप खोज खबर विस्तार मा रसुआ के भोटीकोशी बाढ़ी प्रभावित विभिन्न क्षेत्र से सहयोग जुटी रहल बा। सरकार बाढ़ी पीड़ित के सहयोग के लागि आह्वान करल के संग विभिन्न संघ संस्था तथा मनई हुक्र सहयोग कनाक्रम जारी रहल बा। सहयोगी हुक्र सरकार के प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में रकम जमा करती रहल बाट ऊ कोष मन टीकापुर क्षेत्र के सहकारी हुक्र फे सहयोग रकम जमा करल बाट अपना हुक्र छुट्टी सहयोग लेकर बाढ़ी प्रभावित न सहयोग पुग कैख सहयोग कलक लक्ष्मी नारायण बहुद्देश्य सहकारी संस्था नारायणपुर के अध्यक्ष कपूर सिंह कडायड बतुइलाबाट लक्ष्मी नारायण सहकारी जस्ता सामुदायिक सहकारी तथा संस्था शक्ति फे बाढ़ी प्रभावित के लागि सहयोग कलबा सहकारी आपन सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग कलक बटोइलबा सहकारी के व्यवस्थापक दीपक वैद्य के अनुसार सहकारी 51,211 रूपया प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा करलबा जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था टीकापुर फे बाढ़ी प्रभावित हुन सहयोग कलक बटोइलबा सहकारी 30 के दरखैना कार्यक्रम के लागि छुट्यागिलक 15,000 रकम 30 कार्यक्रम में खर्च निकै का बाढ़ी प्रभावित के सहयोग के लागि पठैलक सहकारी के व्यवस्थापक छपिलाल जैसी जानकारी देलबाट याकरसँग अन्य सहकारी हुक्र फेर रसुवा बाढ़ी प्रभावित के लागि सहयोग करती रहलबाट सरम संस्कृति पार्टी रसुआ बाढ़ी प्रभावित परिवार राहत वितरण कलबा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1K55 जनहन राहत वितरण कलक पार्टी से जनागिलबा हुकन प्रति व्यक्ति 25 किलो चाउर दाल 1 किलो न्वान ओ 1 लिटर तेल वितरण कलबा एकरसँग 150 जना बाल बालिका हुकन हन झोला ओ कुश सेनिटरी प्याड वितरण कलबा कुश मनिन हन औषधि उपचार के लागि 2,000 के दरले नगद फे प्रदान कलक पार्टी के केन्द्रीय सदस्य सरस्वती चौधरी जानकारी दिलबाट

0: लग 161 ठो सर्पके उद्धार कलबा सर्पके टोकाइसे हुइसेकना जोखिम न्यूनीकरण तथा सर्प संरक्षणकना उद्देश्य लिएर टीकापुर नगरपालिका संचालन कलक सर्प उद्धार अभियान अन्तर्गत पालिकाके नगर प्रहरी के टोली 161 सर्प उद्धार कलक हो। टीकापुर नगरपालिका गैलक जेठ महिनामा 10 जन नगर प्रहरी व समुदायमा स्वयंसेवक सर्प उद्धार सम्बन्धी तालिम दिहेलपा छ। प्रहरी घर तथा अन्य संरचनामा फसलक सर्पके उद्धारके लागि अभियान शुरू कलक हो। नगर प्रहरी 57 विषालु व 98 अविषालु सर्प उद्धार कलबा उद्धार कर्गिलक सर्पमा 3 मायुर 1 रसर रसर भाइफर नाउके लोक उन्मुख जातके सर्प व 2 क्याट स्नेक नामक सर्प रहलक नगर प्रहरीके इन्चार्ज पहल शाह बटुइलबाट। याकरसँग उद्धार कर्गिलक सर्पमा कमन करेत करेट अजिंगर कमन कोब्रा ब्ल्याक कोब्रा किङ कोब्रा व ब्यान्डेड करेट लगायतके प्रजाति समेत रहलबाट। विषालु तथा गैर विषालु दुनू प्रजातिके सर्पके उद्धार गर्दै ऐलक नगर प्रहरीसे जनागिल्बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भौतिक फोहोर सफा करल जस्ता प्रदेशके बजेटमा देखगिलक व्यथिति व विकृति फे सफा गर्ती नीति विधि व पद्धतिमा आधारित बजेट निर्माणका नाम बटुइलबाट। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसके पूर्व सन्ध्या मना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री निवास परिसरमा आयोजित सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुई मुख्यमन्त्री भट्ट समाजके हरेक क्षेत्रमा सरसफाई आवश्यक रहलक बटुइलबाट। उहाँ कौनोफे क्षेत्रके सरसफाईके सभ्यता संस्कार व संस्कृति के पहचान झल्कैना उल्लेख करती भौतिक फोहरसँग शासन व्यवस्था नीति प्रक्रिया व बजेटमा देखगिलक व्यथिति के समेत सफाई आवश्यक रहलक बटुइलबाट। नेपाली जनता के लम्मा संघर्ष बलिदान व राष्ट्रिय सहमति के जगमन निर्माण हुलक नेपाल के संविधान सक्कु वर्ग जात क्षेत्र व लिंग के नागरिक के साझा दस्तावेज हुलक उहाँ के कहाइबा। संविधान जनता के सर्वोच्चता हन स्थापित करलक उल्लेख करती मुख्यमन्त्री भट्ट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पाछ आम नागरिक के व्यवस्था परिवर्तन कना चरणमा अपनाहुक्र रहलक बटुइलबाट। व्यवस्था परिवर्तन पाछ आप अवस्था परिवर्तन के चरणमा बाटी वाकर लागि हरेक क्षेत्रमा सुधार व सरसफाई आवश्यक बा मुख्यमन्त्री भट्ट कल। प्रदेशमा बजेट शून्यताके अवस्था अन्त्य गर्ती नीति विधि व पद्धतिमा आधारित होक हली बजेट लड्न तयारी हुइटी रलक्षे उहाँ जानकारी देलबाट। खोज खबरमा एकको घरिक विश्राम विश्राम पाछ आइनिनी बाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
2: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू

0: प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
0: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली। आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
4: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
3: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
4: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
3: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
4: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
6: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 सत्तीकी सुरेश कुमार कर्ण इजरायलके राजदूत मसिफारी सुलबाट सत्तीकर होक लम्मा समय थिएसे काठमाडौँमा व्यवसाय कर्ती ऐलक कर्ण कम्प्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल क्यानके पूर्व अध्यक्ष हुइट शुक्रबार बैठक मन्त्री परिषद बैठक से कर्ण सहित 13 देशके राजदूत नियुक्तिकी लागि सिफारिश गरिलक हो। सरकार भारतकै लागि निश्चल नाथ पाण्डे, अमेरिका के लागि चिरञ्जन थापा, चीन के लागि कल्याण राज शर्मा सिफारिश कर्लख हो। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल विभिन्न क्षेत्रके अब्बल मनेनहन राजदूत नियुक्तिकी लागि सिफारिश कलक जानकारी देलाबाट सिफारिश कर्किलक प्रस्तावित राजदूत हुकनह संसदीय सुनैके लागि पठाजिनाबा। संसदीय सुनै ओराइल पाछ सरकार सम्बन्धित मुलुकमन अग्रिमोके लागि पठियाबा। अग्रिमो आयल पाछ राष्ट्रपति राजदूतमन नियुक्ति करियाबाट। सरकार नियुक्तिकी लागि सिफारिश कलकमन डाक्टर निश्चल नाथ पाण्डे भारत, डाक्टर कल्याण राज शर्मा चीन, चिरञ्जन थापा संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जंग बहादुर राणा बेलायत, जी ज्ञान कुमार थापा जापानकी लागि सिफारिशिलबाट, वस्तक प्राप्ति शेरचन स्पेन, सारु जोशी जर्मनी, डाक्टर पद्याची राणा ओमान, चुडामणि खरेल मलेसिया, प्राचार्य डाक्टर संगम श्रेष्ठ दक्षिण कोरिया, डाक्टर मञ्चल झा श्रीलंका ओ गिरी बहादुर सुनार साउदी अरेबियाकी लागि सिफारिशिलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2083 भव्यता के साथ मनैना निर्णय कलबा। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टकी अध्यक्षतामा बैठक छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस देशभर प्रदेशभर विभिन्न कार्यक्रम सहित भव्य रूपमा मनिना निर्णय कलक हो। बैठक से मुख्यमन्त्री भट्टकी अध्यक्षतामा विभिन्न पदाधिकारी सम्मिलित 23 सदस्यीय मूल समारोह समिति समेत गठन हुल्बा। बैठकके निर्णय अनुसार असोज 2 गते प्रदेशके सक्कु मन्त्रालय, सरकारी निकाय कार्यालय तथा स्थानीय तह आपन आपन कार्यालय, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रिय झण्डा वा दिवस केन्द्रित ब्यानर ढैकन सजावट गर्न, गाउँ तथा नगरके श्रृंगार एवं सरसफाई गर्न सन्ध्या दीपावली कना कार्यक्रम तय करगिल्बा। वस्तक असोज 3 गते बिहान 7 बजे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा मूल समारोह आयोजना गर्न हुल्बा। मूल समारोहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सभामुख मन्त्री तथा राज्य मन्त्री हुक्र सचिव हुक्र संघ प्रदेश स्थानीय तहके कर्मचारी सार्वजनिक तथा संघ संस्थाके प्रतिनिधि लगायत सर्वसाधारणके सहभागिता रहियाबा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेशके सक्कु जिल्ला स्थानीय तह तथा जनस्तरसम्म राष्ट्रिय दिवसके रूपमा भव्यताके संग मनाइना निर्णय समेत बैठक कहलबा। राष्ट्रिय सभाके सांसद हुक्र बाढ़ी पहिरो लगायत विपदके पूर्व सूचना तत्काल जोखिममा रहलक नागरिकके घर दैलोमा पुगाई पर्नामा नजोर देलाबाट राष्ट्रिय सभाके आजके बैठकके प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दी नेपाली कांग्रेस पार्टीके सांसद कमला पन्त परिवर्तन हुइटिरलक हिमतालो हिमनदी बाढ़ी पहिरोले से मानव बस्तीमा न जोखिम बहरलक बटोइटी सरकार प्रत्येक नागरिक सुरक्षाके प्रत्याभूत कराइपना बटुइलबाट वहाँ गोर्खामा रहलक विमानस्थल संचालन कर्ना विषयमा न सरकार ध्यान दिएपना गोरखकाली रबर उद्योग संचालन कैकै युवा हुकन्ह रोजगारी देहपना हिमनदीके रूपमा चिन्जिना काली गण्डकीमा कलक नाही शालिग्राम पैना विषयमा फे अध्ययन अनुसन्धान करपना मन जोर देलाबाट गण्डकी प्रदेश स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकके आकर्षण स्थलके भरिपूर्ण रहलक उहरसे उहाँ पुग्ना पहुना हुकन्ह लम्मा समय बैठना वातावरण मिलाई सरकार आग्रह कर्ती सांसद पन्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यके जन्मस्थल साहित्यिक पर्यटक पर्यटन से ज्वारापना बटुइलाबाट बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीके सांसद उर्मिला आर्याल मध्य प्रदेश जनसंख्याके हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहलसे फे सामाजिक र आर्थिक हिसाबसे पाछा पहलक बटुइटी मध्य से सम्बन्धित सूर्य संरक्षणके लागि सरकार विशेष योजना लानपना बटुइलाबाट वहाँ मध्यके नागरिक रोजगारी स्वच्छ खानेपानी निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच पुगैन सरकारके ध्यान आकर्षण गरैलाबाट बैठकमा नेकपा एमालेके सांसद रोशनी मिचे तीन तहके सरकार बीचके समन्वय हुई निस्याक बेर प्रदेश स्थानीय तहके वित्तीय संघीयताके अनुभूत करनी शेकलक बटुइलाबाट सांसद मिचे धनकुटा अस्पतालके भवन निर्माण अल्पत्र परबेर 17 करोड़ से फे ढिर रकम फ्रिज होक जाइबेर ठेकेदार कार्यवाही कर कानूनी सामर्थ्य से प्रदेश सरकार वंचित हुईलक सोलुखुम्बू स्थित मकालुङ गाउँपालिका पहिरोके कारण 100 मिटर लम्मा ड्याम बनलको ऊ ड्याम जौन बेला फे फुट सेक्ना हुइलक उहर्से बेला मन वा क्षेत्रके नागरिकके सुरक्षामा सरकार ध्यान दिएपनामा जोड देलाबाट वस्तक जनता समाजवादी पार्टीके सांसद मोहम्मद खालिद तराई मधेस प्रदेश न्याय हुइनाकैक अबसम्म बजेट विनियोजन हुइनी सेक्लक मधेसके समृद्धिसे जोर्गी र खुलाकी राजमार्ग समयमा बननी सेक्ना राज्य संयन्त्रके कमजोरी ओ सरकारके मधेस प्रतिके उदासीनता हुइलक बटुइलाबाट सरकार तराईके मधेसी ओ मुस्लिम समुदाय भित्रके विपन्न नागरिक हुकनके आरक्षण उत्थान ओ सशक्तिकरणके लागि विशेष व्यवस्था करपनामा सांसद खालिद जोर देलाबाट बैठकमा सांसद ठुक्र सुरेश कुमार आलेमगर मीना सिंह रखाल रेखा कुमारी झा लगायत नेपालके प्रादेशिक विशेष मध्यनजर कैक सरकार पर्यटन विकासके योजना बनाइपना मुस्ताङ मन रहलक युरे नियम खानीके विस्तृत अन्वेषण कर सरकार हन आग्रह कलबाट यी से आग बैठकके सुन्ने समय मन सांसद ठुक्र समसामयिक विषयमा सरकारके ध्यान आकर्षण गरैलरल ह। रसुवा बाढ़ी पाछा प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोगके जोखिम बढ़लबा पाछक तीन सातामा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा 81 जनामा छाला पखाला देखिल्बा स्वास्थ्य मन्त्रालयके प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीके अनुसार अस्थायी आवास ओ होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी तथा सरसफाईके समस्या व्यवस्थित शौचालयके अभाव ओ मनिनके भीड़के कारण संक्रमणके जोखिम बहरलक होल्डिङ सेन्टरमा बैठिरलक मनिन हुकनमा छाला पखाला देखिल्बा भारे आउटब्रेक वा महामारी के रूप में लेना कई फैलल नहीं हो अधिकारी कल अस्थायी बसोबास के कारण संक्रमण के जोखिम बढ़ी हुई हुईलक से सतर्कता अपनैल बाटी बाढ़ी पहिरो पाछा प्रभावित क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलना जोखिम बढ़त बाढ़ी के कारण खाने पानी के मुहान तथा खाद्य पदार्थ दूषित हुई हुईलक से पानीजन्य रोग के संक्रमण फैल सेक्ना जनस्वास्थ्य विद बटुलाट विशेषकै झाड़ा पखाला हैजा रुगा खोकी टाइफाइड डिंगो लेप्टोएफ्राइसोसिस भाइरल हेपाटाइटिस तथा विभिन्न छाला सम्बन्धी संक्रमणके जोखिम बढ़त रसुवाके उत्तर गैया गाउँपालिका स्थित शिवालय आधारभूत विद्यालयमा बैतिरलक कुश बाढ़ी प्रभावित मन जुरीके समस्या देखिल्बा नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयके शिक्षक प्रकाश नेपाली कुश दिन यहाँ जुरीके बिरम्यन बहरलक बटुइलाबाट। खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
7: आँखाका रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ, गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगोरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
8: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल?
9: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
8: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगवा बुढो हन कबु कहुर घुम जाए त था पाए।
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी को समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
12: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98-688-0008 र 98-25-67-72-72।
6: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा हैजा नियन्त्रणकै लागि मुक्से देना हैजा विरूद्धकै खोप ओरल कोरोला भ्याक्सिन अभियान तीव्र बनागिल्बा। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा सार्वजनिक अलग बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा नियमित खोप सेवा तथा खोपसे रोकथाम करसेकदिना रोगके निगरानी सम्बन्धी पाचक प्रतिवेदनमा रसुवा व नुवाकोटके बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा 59,732 जना खोप लगैलक उल्लेख गर्लबा। प्रतिवेदन अनुसार रसुवामा 15,812, नुवाकोटमा 43,920 जना मुक्से डेजिना हैजा विरूद्धके खोप पहिला खुइट। रसुवाके गोसाईकुण्ड, उत्तर गैया, आमा छोडिङमो ओ कालिका गाउँपालिका मना तथा नुवाकोटके विदुर, बेलकोट, गढ़ी, किस्पाङ ओ तारकेश्वर गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुइटिरहल्बा। यही बीचमा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र मन टिटानस, डिप्थेरिया खोप फे स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी तथा घाइते मनिन हन फे खोप प्रदान हुइटिरहल्बा। रसुवाके 4 स्थानीय तहमन 821 जन टीडी खोप लगाइलबाट कलसे, नुवाकोटके विदुर नगरपालिकामा 113 जन डीडी खोप लगाइलक प्रतिवेदनमा जनागिल्बा। प्रतिवेदन अनुसार बाढ़ी पाछ शंकास्पद दादुराके 8 रिपोर्ट रहलक मन, 7 नमूनाके परीक्षण नेगेटिव आइलबा कलसे, 1 नमूनाके नतिजा बाँकी रहलबा। उ मध्ये रसुवा के 6 व नुवाकोटके 2 नमूना रहलबा। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदाय के लागि न्यायपूर्ण सम्बोधन प्राप्त तथा सहज रूपमा उपलब्ध गराइन उपलब्ध हुन जलवायु वित्त सुनिश्चित कल्पनामा कर्ती धनगरीमा युवा तथा नागरिक समाज दबावमूलक कार्यक्रम करलबा धनगरी उपमहानगरपालिका स्थित पार्क मोड जेएनजी मार्गमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा युवा बालबालिका महिला लैंगिक तथा यौनिक विविधता हुइलक मनै अपाङ्गता हुइलक मनै नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रके प्रतिनिधिके सहभागिता रह संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जेटी जेटी खबर के मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुरमा सर्प उद्धार अभियान साउनो भडौमना 161 सर्प के उद्धार टीकापुरमा सहकारी सेरसुवाबारी प्रभावित राहत प्रदान फोहोर सफा करल जस्ता बजेट के बेठी टिफे सफाका नाम मुख्यमन्त्री भट्टके काई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनैना ओ पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाई सरकार के ध्यान आकर्षण लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सकी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिदी मई गीता फे विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
13: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ
14: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्टपुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
13: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
15: कागजात हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टीकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ सम्पर्क नम्बरहरू 9764-26-97 र 9815-60-66-05
16: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलाली को भक्तजन का लागि सूचना
2: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलाली को आयोजना में भदौ 30 गति देखि असोज 5 गति सम्म संचालन हुने श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम 2083 भव्य तथा सभ्य रूप में संपन्न गर्न संपूर्ण भक्तजनहरुको गरिमामय उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
1: श्री गणेश उत्सव का कार्यक्रमहरु भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाएका र सम्पर्क विहीनको लागि हरेक दिन शान्ति पाठ हुने
2: विद्यालय स्तरीय नृत्य कार्यक्रम
1: हरेक दिन भजन कीर्तन र नृत्य कार्यक्रम
2: हरेक दिन बिहान योग कार्यक्रम
1: विसर्जन कार्यक्रम असोज 5 गते बेलुका 5

0: आनल झोला दस काटस बातिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नी आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबु रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर नगर पालिका को अत्यंत जरूरी सूचना जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटना घटेको 35 दिन भित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउं विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राहदानी बनाउन नाबालक परिचय पत्र बनाउन बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाऊ व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो नभुल्नुस् है व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिन भित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊ थप जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय